सो आप लोग आ गए हैं वापस और सुन रहे थे आतिफ असलम की सॉन्ग्स। जैसे कि मैंने आप लोगों को पहले भी बताया कि हम लोग आज जो हैं वो सिर्फ आतिफ असलम के सॉन्ग्स चलाएंगे, बिकॉज मुझे पता है कि ईद के बाद हम लोग दोबारा वापस आ रहे हैं और ईद से पहले मैं और भी बहुत सी ईद के बाद मैं बहुत सी और भी चीज़ें प्ले कर सकती थी, बट मुझे आतिफ असलम के गाने प्ले करने थे भाई क्योंकि आई डोंट नो, बिकॉज आई थिंक कि आतिफ असलम सम हाउ बहुत ज़्यादा कंफर्ट देता है। और आतिफ असलम का मेरे साथ वो, मतलब आप जब ग्रो कर रहे होते हो तो उस टाइम पर जो आप गाने सुनते हो तो उनकी आपके साथ अलग ही एफिलिएशन होती है, वो आपको अलग से ही अच्छे लगते हैं। तो कभी भी मैं आप लोगों को हमेशा कहती होती हूँ कि अगर आप लोगों को कोई टाइम मशीन अभी एक्सपीरियंस करनी है तो वो म्यूज़िक है। मतलब इट्स एक्चुअली लाइक दैट के जो गाने आपके घर वाले सुना करते थे, आपके पेरेंट्स सुना करते थे, आप लोगों की स्पेशली मदर्स और सुना करते थे, वही वाले सॉन्ग्स जब आप अभी चलाते हो तो आप उसी टाइम्स में गुजर जाते, मतलब आप उन्हीं टाइम्स में चले जाते हो, ट्रांसपोर्ट हो जाते हो। तो आई ऑलवेज से दैट म्यूज़िक इज़ लाइक अ टाइम मशीन, और आपको अगर अपने आप को एक दूसरे टाइम्स में ट्रांसपोर्ट करना है तो आप बड़े आराम से म्यूज़िक लगाएं और पुरानी दुनियों में गुम हो जाए। तो सो आतिफ असलम के मैं पुराने गानों से शुरू कर रही हूँ, देखेंगे अगर नए वाले गाने मैं चला सकी या नहीं, बिकॉज़ मैं वो वाले पुराने गाने चलाना चाह रही हूँ जो हम लोगों ने बहुत देर से चलाए नहीं हुए हैं। और मैं आज बातें बहुत कम करना चाह रही हूँ, मैं आप लोगों को बता सकती हूँ कि मेरा दिन कैसा चल रहा है और क्या हो रहा है, बट जब हम आतिफ असलम के गाने सुन सकते हैं तो मैं अपना बोल बोल के आप लोगों का दिमाग क्यों खाऊं, यू नो दैट्स द क्वेश्चन। सो अभी मैं चलाने लगी हूँ आतिफ असलम का एक और सॉन्ग। लाजमी नहीं है कि मुझे ये सारे गाने पसंद हो, बट मैं ये गाने चलाना चाहती हूँ बिकॉज आई वॉन्ट यू पीपल टू इन्जॉय द पुराना वाला आतिफ असलम का वो जो एसेंस हुआ करता था। ठीक है, तो अभी चलाने लगी हूँ मैं दूरी, और जब आप लोग वापस आएंगे तो उसके बाद हम लोग ये सुनेंगे और उसके बाद फिर हम लोग थोड़ा सा ना बात करेंगे आतिफ असलम का और मेरा, मतलब किस टाइप का वो रहा है हमेशा से रिलेशनशिप, यू नो फिर बिंदूंगा। ओके सो हियर यू गो विद दूरी सही जाएगा।

0: आप लोग आ गए हैं वापस और आप लोग सुन रहे थे आतिफ असलम का सॉन्ग दूरी। आतिफ असलम की जो पहली एल्बम थी ना, उसके बारे में थोड़ा सा बात कर लेते हैं। मतलब आई हैव ऑलवेज लव्ड आतिफ असलम की पहली वाली एल्बम। मैं उस टाइम पर बहुत छोटी थी, आई वाज लाइक हाउ ओल्ड वाज आई व्हेन इट केम, व्हेन डिड इट कम, इट वाज लाइक अराउंड 2005 और समथिंग। और उस टाइम पर जो है मैं कौन सी क्लास में थी, मैं छोटी थी यार, मैं 6th 7th में थी आई थिंक। खैर, तो उस टाइम पर हम लोग ये सुना करते थे और मेरे लिए मतलब जलपरी वॉज अ वेरी वेरी सूदिंग सॉन्ग। और उस तरह पे उस टाइम पर आतिफ असलम की आवाज़ भी थोड़ी सी वो डिफरेंट समझी जाती थी। और उस टाइम पर सब लोग वो इतना वो हुआ करते थे कि एक लड़का आया है जो नए तरीके से सुनता है, नए तरीके से गाना गाता है और इस तरह की ना चीज़ें। तो मतलब आई ऑलवेज हैव लाइक्ड इट। उससे पहले बैंड हुआ करता था और उसके बाद ये लोग जो हैं वो अलग अलग हो गए, आतिफ अपना गाने लग गया। और उसके बाद फिर जो गौहर है उसने व्हाट इज हिज नेम, गौहर फहद फरहान यू नो, अगर आपको पता है तो आपको पता है कि मैं एफ से जितने भी नाम शुरू होते हैं मैं उनके साथ बहुत बुरे हालात है मेरे। तब इन्होंने अपना जल बैंड बना लिया था, फरहान गौहर और इसके साथ में एक और इन लोगों का गिटारिस्ट हुआ करता था। और ये लोग भी बहुत अच्छे गाना गाया करते थे। मतलब आई ऑलवेज लाइक देयर सॉन्ग्स एज वेल, बट आतिफ असलम ऑब्वियसली वो अल्लाह मियाँ जिस पर मेहरबान हो जाए, मतलब वो वाली चीज़ थी। बट आतिफ असलम हैज़ ऑलवेज बीन अ जैम और ही हैज़ मतलब उस बंदे की आवाज़ ने एक डिफरेंट तरह का सिंगिंग स्टाइल इंट्रोड्यूस करवा दिया था। और अभी मैं अरिजीत को सुनती हूँ तो मुझे कभी कभी और आतिफ असलम जैसी चीज़ उसकी लगती है। अभी मैं एक और अगैन, तो मेरी जो फरबिंदुंग है वो आतिफ असलम के साथ ये है कि मैं मतलब उस टाइम पर पॉप इंडस्ट्री जो है वो पाकिस्तान की थोड़ी चेंज हो रही थी, थोड़ी नहीं मतलब काफ़ी चेंज हो रही थी। तो मतलब उस हिसाब से अगर आप देखें तो वो इट यूज़ टू बी लाइक अ वेरी रेवोल्यूशनरी एरा, मतलब मेरे ख्याल से पॉप म्यूज़िक के हिसाब से। मतलब जो पुराने लोग थे जिनको हम सुन रहे थे, जो बहुत ज़्यादा फोक पंजाबी सुना गाया करते थे, लाइक अबरारुल हक, जवाद अहमद टाइप पीपल, वो हारून एंड ऑल दोज पीपल, उस टाइम पर वो एकदम से चेंज होने लगे। तो मतलब दे स्टार्टेड सिंगिंग कुछ डिफरेंट किस्म के सॉन्ग्स जो मतलब जो बॉलीवुड से इंस्पायर्ड नहीं थे, क्योंकि पाकिस्तान का हमेशा से अपना एक तरीका था, लेकिन वो सॉन्ग्स जो थे वो हॉलीवुड से इंस्पायर्ड थे। मतलब एक सेकंड, सो हम बात कर रहे थे आतिफ असलम के बारे में। आई एम सो सॉरी फॉर द इंटरप्शन बिकॉज कुछ टेक्निकल वजूहत की बाइस मुझे बंद करना पड़ गया, सो आई एम सो सॉरी। अच्छा, हम लोग आतिफ असलम के बारे में बात कर रहे थे कि जब उस टाइम पर रेवोल्यूशनाइज हो रहा था पॉप कल्चर जो है, और एकदम से आतिफ असलम आया और उसकी सिंगिंग का तरीका भी थोड़ा सा डिफरेंट था, बट सम हाउ ही कनेक्टेड विद द यूथ। और मतलब इफ़ यू आस्क मी, आई सम हाउ कनेक्टेड बिकॉज ही वॉज फ्राम द सेम स्कूल एंड देन सो समवेयर डाउन द लाइन आई न्यू हिम ऑल्सो। और उसके बाद इसी तरह आसपास के जितने भी लोग थे, तो पहले सब ने किसी ने भी उसको इतना सीरियस नहीं लिया, बट एकदम से जब वो गाना बहुत बड़ा कोई हिट हो गया, उसके बाद फिर और कुछ 2-3-4 सालों बाद वो इंडिया चला गया आतिफ असलम एंड ही बिकेम अ सेंसेशन। और वहाँ पर भी तो वो वाला सीन हो गया था दैट यू गेट एडिक्टेड टू हिज वॉइस। मतलब वो ऐसे लगता था कि जैसे ओ माई गॉड ये क्या गा रहा है बंदा। तो ज़्यादा बातें कही ना करते हुए आई एम गोइंग टू प्ले जलपरी एंड आप लोग सुनिए और इंजॉय कीजिए, और जब आप वापस आते हैं तो हम गाने के बारे में डिस्कस करते हैं। ओके, सो हियर वी गो।
1: मुझसे कहे
0: ओह आई लव इट।

0: आप लोग आ गए हैं वापस और हम लोग सुन रहे हैं आतिफ असलम के सोलफुल पुराने गाने बहुत मज़े में। जलपरी हैज़ ऑलवेज बीन माई फेवरेट सॉन्ग, मतलब मुझे जलपरी जितना पसंद था, मतलब मैं बहुत ज़्यादा जलपरी सुन सकती होती थी। मैं हमेशा से हैव बीन अ वेरी वेरी बिग फैन ऑफ जलपरी और मतलब आई डोंट नो, बट मुझे जलपरी, एक तो नाम उस तरह का था और उसके बाद आतिफ असलम की एल्बम का नाम भी जलपरी था और उसके बाद आतिफ असलम के ये वाले सॉन्ग में आई डोंट नो, मुझे लगता है कि यू नो मतलब सम वेयर देर इज़ द दिस वाटर जैसी क्वालिटीज, मतलब वेरी लाइक वेरी ईजी ऑन एयर ईयर्स एंड वेरी यू नो जैसे जैसे आप सुनते जाते हो और वो चीज़ आपके कानों में घुलती जाती है। मतलब मुझसे कहे एक जलपरी सो जाने दो, ठहरे जाने दो जल में कहीं, मतलब जलपरी भी इट्स लाइक व्हेन यू टॉक अबाउट जलपरी ना, तो मतलब वो एक पूरा मिस्टिकल क्रिएचर है और वो आपके दिमाग में आता है और आप वही चीज़ें सोचते हो। तो मतलब एज अ किड हु वाज लाइक इन सिक्स स्टैंडर्ड और समथिंग, मैं ये सोचा करती थी कि यार, मतलब सिक्स सेवन स्टैंडर्ड में थी मैं और उस टाइम पर मुझे लगता था कि वाओ, मतलब इट्स सच अ, मतलब इट काइंड ट्रिगर्स योर और स्टिमुलेट योर, इट काइंड स्टिमुलेट्स योर brain also, na? Matlab imagination also. It stimulates and like it encourages you to think about those things jo actually exist nahi karti hain. Aur mujhe wo pani jaisa sab kuch lagta tha. Matlab mujhe, agar main visualize karti thi, to mujhe ye gana hamesha bahut relaxing and soothing lagta tha. And I think it can be because of the wo piche jo tabla dhol type jo aa rahi hai, bass jo hai, choti si music sound jo piche se aa raha hai. Matlab it can be because of that also. One day I was listening to Kanye West's interview and he was saying ke jo musicians hain wo bahut aasani se logon ko control kar sakte hain aur logon ki feelings control kar sakte hain, because there is a thing called resonance and resonance and vibrations jo hoti hain wo bahut zyada aapki body par affect karti hain without you knowing them. Theek hai, to agar aap apne music mein aur apne song mein choti moti aage piche aisi musical sounds डाल दो जो एक ह्यूमन बॉडी को एक तरह से स्टिमुलेट कर रही हैं, जैसे लव, एंगर, कामनेस, इस तरह की जितनी चीज़ें हैं वो आप म्यूज़िकल साउंड से स्टिमुलेट कर सकते हो. एंड ही वाज सेइंग कि कान्ये वेस्ट वाज सेइंग दैट आप इस तरह से अपना एंगर या फिर सेक्सुअल या फिर लव चाक्रास जो हैं उनको एक्टिवेट कर सकते हो. तो इसलिए ही थिंक्स के म्यूजिशियंस जो हैं वो इस चीज़ को बहुत अच्छे से कंट्रोल कर सकते हैं. एज अ साइंस पर्सन या एज अ पर्सन हु टुक पूरे मार्क्स बोर्ड में फिजिक्स में surprisingly, and मैं बाद में वाइवा वाले सर के साथ भड्डा कर लिया बिकॉज मैं बहुत एक आइटम हूँ, तो इसलिए पूरे मार्क्स नहीं आए लेकिन थेरी में पूरे मार्क्स थे. खैर, द पॉइंट इज़ दैट एज अ पर्सन हु बिलीव्स इन फिजिक्स एंड ऑल, आई एक्चुअली बिलीव इन वाइब्रेशंस एंड रेजोनेंस एंड आई थिंक दैट वी ऑल हैव आर ओन स्पेसिफिक वाइब्रेशंस एंड वी ऑल हैव आर ओन सेट ऑफ स्टिमुलाई, एज इन देर आर थिंग्स दैट स्टिमुलेट्स मी एंड देर कैन बी अदर सेट्स ऑफ things that stimulates your body. So and then I believe in chakras as well, like our body kind of react to different kind of vibrations. So I think that music can actually be used, or musical instruments can actually be used to stimulate a part of brain. Maybe इसी तरह से मुझे लगता है कि आपके दिमाग को मतलब बहुत ना एकदम उठाया जा सकता है, लाइक सारे सोए हुए खाने, वो खाने दिमाग के जो आपने कभी यूज़ नहीं किए होते, आप म्यूज़िक सुनते हो और वो आपके खाने जो हैं वो एकदम वाइब्रेट होने लग जाते हैं, बजने लग जाते हैं कि ओह हो अच्छा, ये वाला दिमाग का भी ब्रेन हम यूज़ मतलब हिस्सा हम यूज़ कर सकते थे. अब मैं ज़्यादा ना आतिफ असलम के दरमियान में बोलना नहीं चाह रही थी लेकिन मैंने अपनी साइंस तो घुसानी है ना, तो सॉरी कि मैं ज़्यादा बोलने लगी. लेकिन आप लोग सुनिए, अब गल सुन जा तू मेरी ओ जान वाली है. ओ माई गॉड, लव द सॉन्ग. जलपरी हैज़ टू बी माई फेवरेट एल्बम ऑफ आतिफ असलम. सो हियर वी गो विद आतिफ असलम्स नेक्स्ट सॉन्ग. हियर वी गो. ना एक सेकेंड, ये क्या हो रहा है? गल सुन जा, ओ ये आगे क्यों हो गया हुआ? एक सेकेंड, ओके हियर वी गो. मैंने कुछ गलत बटन्स दबा दिए हैं शायद. Ooh, here we go.
1: Vollgas.

सो आप लोग आ गए हैं वापस और आप लोग सुन रहे थे आतिफ असलम का सॉन्ग सुनजा. आई लव दिस सॉन्ग. जैसे कि मैंने आप लोगों को बताया, मतलब अभी जब मैं आप लोगों के साथ बैठकर पहली दफ़ा ये पूरी की पूरी एल्बम चला रही हूँ ना, तो मुझे रियलाइज़ हो रहा है दैट मुझे हर एक गाना बहुत पसंद है आतिफ असलम का, मतलब इस एल्बम का. मतलब आई डोंट नो बट मुझे हमेशा से मतलब जब आप आतिफ असलम के गाने सुन, ओ आई यूज़ टू ओन आतिफ असलम की एल्बम. मुझे अभी अभी याद आया, मतलब मेरे पास घर में एल्बम, मतलब वो सीडी हुआ करती थी आतिफ असलम की. ओ माय गॉड, दैट्स अ बिग थिंग. मतलब मुझे लगता है कि आतिफ असलम के बाद अगर मैं कोई सीडी अब ख़रीदूँगी तो वो बीटीएस की हो सकती है. आई रियली वॉन्टेड शुगर की, डी डे की, बट अभी तक नज़र नहीं आई मुझे कहीं. ऑनलाइन बिस्टेल नहीं करना चाह रही मैं. आई डोंट नो, द जो मज़ा आपका ख़ुद लेने में होता है ना, वो आपका उस तरह से ऑनलाइन मंगवाने में नहीं आता. बट देन देर इज़ दिस फीलिंग कि जब आपको एकदम से वो बंदा आता है लेकर, आपका पोस्ट का है जो है वो लेकर आता है जब, तो क्या बात है, क्या बात है भाई साहब, क्या बात है. सो आई होप कि आप लोग जो हैं वो बोर नहीं हो रहे होंगे. और अभी अभी मुझे एकदम से, मैं बहुत ही नॉस्टैल्जिक हो गई कि मेरे पास तो एल्बम्स भी होती थी, मतलब एल्बम भी होती थी आतिफ असलम की, मतलब एक ही होती थी, यही वाली ली हुई है मेरे ख्याल से मैंने. और ओह गॉड, मुझे अभी अभी आतिफ असलम का एक और गाना याद आ गया. सो अभी हम चलाने लगे आतिफ असलम का एक और गाना, बिकॉज मैं आप लोगों को तंग नहीं करना चाहती. और आप लोग वो सुनिए, एंड आंखों से जब भी हो तेरी आंखें जुदा. ओ माय गॉड, आई लव द सॉन्ग. अभी अभी मुझे रियलाइज़ हो रहा है कि मुझे सारे सॉन्ग्स बहुत पसंद है, तो किसी तरह मैं स्क्वीज़ इन करने की कोशिश करती हूँ पूरी एल्बम. आप लोग सुनिए आतिफ असलम का एक और गाना. और अगर आप लोग मेरे आज बातें करने को मिस कर रहे हैं, तो मैंने पहले अभी बहुत ज़्यादा बातें कर ली हैं, तो डोंट मिस मी. ओके, या मिस मी, मतलब या. चले जी, आप लोग बात आतिफ असलम का अगला गाना सुने, और जब हम वापस आएंगे तो हम लोग दोबारा से बातें कर सकते हैं, बिकॉज बातें करना तो फ्री में आइए था. इट गोज विदाउट सेइंग, निमरा कम्स एंड टॉक्स ऑल द डे. ओके, तो आतिफ असलम आंखों से. जी हाँ, फोर्स वुल्फ यान. ओ गॉड, ओके, बहुत ही बूढ़े हो गए हम, आतिफ असलम भी. सर सुनिए और इन्जॉय कीजिए. God, this unlocks so many memories. The music, oh my God.

What? गोल्ड भाई साहब, गोल्ड. आप लोगों की समात को आज मैंने गोल्ड, लाइक क्या कहते हैं उसको, वाइब्रेंट गोल्ड, आई डोंट नो व्हाट टू से दैट, हाउ टू से इट, बट मैंने आप लोगों की जो समात है आज उनको मतलब एक्चुअली गोल्ड बख्शा है, बिकॉज मतलब भाई साहब क्या बंदा है. और उसके बाद ज़्यादा बात नहीं मैं करना चाह रही, बिकॉज मुझे दो गाने प्ले करने हैं और दोनों मेरे बहुत फेवरेट हैं. और मुझे ना पता है मसला ये हो रहा है कि अब मुझे बहुत ज़्यादा गाने प्ले करने हैं और मुझसे हो नहीं रहे हैं, तो हम आज स्टिक कर रहे हैं पुराने आतिफ असलम के गानों पे. और मैं और बहुत से कर सकती थी, बिकॉज मेरी बहन कहती है कि जब आपको दिल जो है वो ऊपर नीचे होता है और दुखी दिल का सहारा सिर्फ आतिफ असलम होता है. एंड देन मैनी पीपल हैव सेड टू मी कि आप लोगों को नशा करने की क्या ज़रूरत है जब आतिफ असलम एग्जिस्ट करता है. तो मतलब इस तरह की बहुत सी बातें मैंने आतिफ असलम के बारे में सुनी हुई हैं. मुझे पुराने एल्बम्स बहुत पसंद हैं और आतिफ असलम को आप रेजिस्ट नहीं कर सकते हैं, तो इसलिए ही इज़ अ थिंग, ही इज़ अ लेजेंड, लिविंग लेजेंड है भाई साहब. तो आप लोग सुनिए और इन्जॉय कीजिए अगला गाना, और मुझे ज़रूर बताइए कैसा लग रहा है सब कुछ. ओके, देखिएगा.

गॉड भाई साहब, आप लोग आ गए वापस और मतलब कि क्या गाना सुना दिया ना मैंने आप लोगों को आज मतलब लाइफ इज़ मेड, मैं बता रही हूँ आप, नहीं मतलब लाइफ तो नहीं खैर कह सकते, बट योर इवनिंग हैज़ जस्ट बीन मेड। अभी मैं और गाने चलाना चाह रही हूँ लेकिन मुझे समझ नहीं आ रही कि मैं कौन सा चलाऊँ और कौन सा ना चलाऊँ, लेकिन हम ज़रूर चलाएंगे कोई और गाना और कोई हिप हॉप चल। ओ गॉड अभी मुझे एकदम से मेरी कहानी नज़र आ गया, ओ माय गॉड, ओ गॉड बहुत गाने हैं भाई साहब, बहुत गाने हैं। मतलब आतिफ असलम के ऊपर तो हम लोग 3-4 शोज़ कर सकते हैं, बट आई थिंक कि मैंने ऑलरेडी आतिफ असलम के ऊपर सॉन्ग्स के ऊपर ये किया हुआ है, लेकिन उसके साथ साथ मैं चाहती थी कि हम लोग पुराने वाले गाने जो हैं आतिफ असलम के ना, मैंने एहसास नहीं चलाया ना अभी, मैं एक तो लेट्स स्टिक टू द आतिफ असलम की पुरानी एल्बम और उसमें बस एक गाना रह गया और ये वाला भी हम चला लेते हैं ताकि कुछ पीछे रह ना जाए। ओके मतलब इमरान खान की तरह कि कुछ रह ना जाए पीछे। भीगी भीगी यादें, ओ भीगी यादें भी है, यस यस बजा फरमाए। उफ़ यार मुझे दोबारा करना पड़ेगा। अगर आप लोगों को आतिफ असलम के जो रह चुके हैं गाने वो सुनने हैं तो प्लीज़ आप लोग मुझे फ़ीडबैक ज़रूर दीजिएगा। फीडबैक का तरीका बहुत आसान है, जैसा कि आप लोग जानते हैं, पाक इंडिया रेडियो फैब्रिक की वेबसाइट पर जाइए, वहाँ पर जाके प्रोग्राम्स में पाक इंडिया एक्सप्रेस को ढूंढिए। पाक इंडिया एक्सप्रेस को जब आप क्लिक करेंगे तो एक बहुत ही वियर्ड किस्म की मेरी तस्वीर होगी, जी हाँ वो मैं ही हूँ, बहुत साल पहले लेकिन वो एक बहुत वियर्ड सी तस्वीर होगी। उसको जब आप स्क्रॉल करके नीचे आएंगे तो बिल्कुल एंड में आके फीडबैक कॉलम होगा, वहाँ पर जाकर आप कुछ भी लिख सकते हैं, आपको जो भी गाने पसंद हैं वो आप लिख सकते हैं, जो भी गाने आप नए सुनना चाहते हैं, जो भी टॉपिक्स पे आप चाहते हैं कि मैं बात करूं। अगर आप लोगों को कुछ नहीं पसंद आ रहा तो वो भी आप लोग वहाँ पर जाकर मेंशन कर सकते हैं। अभी मैं चलाने लगी हूँ आतिफ असलम का एक और गाना और इस तरह से हमने आज का आतिफ असलम स्पेशल जो है वो वाइंड अप कर दिया है। अगर आप एक और आतिफ असलम स्पेशल सुनना चाहते हैं, बिकॉज आतिफ असलम का भी वो वाला सीन है कि हम उसको ओल्ड एज, मिडिवल एज, एज रेनेसांस और एज ऑफ इनलाइटमेंट, इस तरह की चीज़ों में हम उसको भी डिवाइड कर सकते हैं, बिकॉज ऑब्वियसली वो पिछले 12-13 सालों से बेस्ट गाने गा रहा है। मतलब जब भी वो गाने निकालता है तो वो बेस्ट ही होता है। मेरी बहन मुझे, मतलब आई एम नॉट अ पर्सन हु गोज़ टू कॉन्सर्ट्स, और मेरी बहन हमेशा कहती है दैट इफ़ यू वॉन्ट टू गो तो यू विल हैव टू गो टू आतिफ असलम का कॉन्सर्ट। विल सी अबाउट दैट, दैट आई ऑलवेज थॉट दैट इफ़ आई वॉन्ट टू गो एंड वॉच लाइक सी अ कॉन्सर्ट I would go to Lieber, maybe I'll go to Diljit ka concert or maybe something like that. BTS ke concert main nahi ja sakti, mere se nahi ho payega. Matlab seriously, mujhe wo feeling jab itne log hote hain aur wo aapko dekh rahe hote hain, every same person has the same feeling for you, to wo ek realization hai ki itne bade samundar mein aap sirf ek qatra bhi nahi ho, wo matlab chhota sa ek proton, electron, atom ho sakte ho. Lekin pata nahi, I don't know, maybe life mein ye cheeze meri kahin na kahin jaake change ho jaye, but mujhe hamesha aise लगता है कि दैट इज लाइक जब आई विल गो टू अ कॉन्सर्ट तो वो एक रियलाइजेशन होगी कि आप बिल्कुल कहीं पर भी स्टैंड नहीं करते, बिकॉज देर आर सो मैनी पीपल हु लव दीज पीपल और वो आपको जानते तक नहीं है, एंड दे डोंट इवन सी यू और लाइक कैन सी यू बिकॉज आपकी जेब अफोर्ड नहीं कर सकती आगे की टिकटें लेना या समथिंग लाइक दैट। मतलब दैट्स लाइक मैम बड़ा अजीब किस्म का टॉपिक है, मैं इस टॉपिक पे आप लोगों के साथ कभी बाद में बात करूंगी, लेकिन द पॉइंट इज़ दैट आतिफ असलम कैन, मतलब लेट्स सी कभी लाइफ में हुआ तो लेट्स सी। ओके आप लोगों को मेरी लाइफ की अपडेट्स तो मिलती ही रहती हैं रेडियो फैब्रिक के ज़रिए और मतलब पाक इंडिया एक्सप्रेस के ज़रिए, इसी तरह हम एक दूसरे के साथ चलते रहेंगे, एक दूसरे के साथ बातें शातें और व्यूज़ अपने ज़रूर शेयर करते रहें। आप लोगों को अगर इस तरह के और किसी के बारे में भी करना है, जैसे आज आतिफ असलम के साथ मैंने किया लिस्ट, पूरी प्ले लिस्ट आतिफ असलम की थी, इसी तरह आप लोग किसी और की भी जाते हैं तो ज़रूर कर सकते हैं हम लोग, अपने सजेशन ज़रूर भेजिएगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, जहाँ रहें खुश रहें, अपने आसपास के लोगों का बहुत बहुत बहुत सारा ख्याल रखें और

0: मिलते हैं दोबारा. कब है अगला शो? अगला शो है जनाब हमारा ऑन द 16th ऑफ मई. मई में मिलते हैं. ख्याल रखें, मौसम अल्लाह करे कि और बेहतर हो जाए. पाकिस्तान इंडिया के लिए भी दुआ करें क्योंकि बारिशें होने वाली हैं. पाकिस्तान के लिए खसूसी दुआ करें बिकॉज वहाँ पर पॉलिटिशियंस भी बेगैरत हैं. तो सॉरी, आई एम सो सॉरी. तो इसी नोट के साथ अब टाइम हो गया मेरे ख्याल से, अभी मुझे बंद कर देना चाहिए, मुझे बोलना बंद कर देना चाहिए. चलो इसी टॉपिक के साथ अब हम रखते हैं आज का, अब हम वाइंड अप करते हैं. अगर ये गाना जल्दी शुरू ख़त्म हो गया बिकॉज ये सिर्फ 3.5 मिनट का गाना है, तो उसके बाद मैं कोई और गाना चला दूँगी. ठीक है, सो हियर यू गो. अपना ख्याल रखिए, अपने आसपास का ख्याल रखिए. जहाँ तक मेरी आवाज़ पहुँचे, आप सबको मेरा दुआ सलाम और प्यार पहुँचे. अस्सलाम वालेकुम साल्ज़बर्ग.
1: मैं एक जिस्म हूँ
0: और दरमियान में मैं भी गाती रहूंगी.

सो जैसे कि मैंने आप लोगों को कहा था, अभी हम चला देंगे दूसरा गाना, तो कोई टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं है. ओके, हियर वी गो, एंजॉय. या बट एड्स का ख्याल रखना होता है. देन हियर वी गो, एंजॉय.